0: ताली तक जमी तक ताली तक जमी तक धला आम तक जुगे तक ताली के नदी तक जमी तक नक नक जुम तक नक नक जुम तक नक नक जम तारी ता जग तारी ता जन जाने को धारी दामू तारी गेटे ताली जम तारी ता जग तारी ता जन जाने को धारी दामू तारी गेटे जम तारी जग तारी जग नक नक ता जिन ता जिन ता जिन ता जम तारी जग तारी जाने जाने को ता जिन ता जम ता जिन ता ताक दंग दम कर दंग दम ताक दंग दम
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

अल्लाह मेरी मदद कर अल्लाह, मैं कुर्ती को छोड़ूंगा नहीं मैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह।

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: आरती मन मानती कहना क्यों नहीं मानती पाठशाला में छुट्टी हो गई बस्ता क्यों नहीं बांधती बस्ता क्यों नहीं बांधती.

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे

0: एक कुड़ी फंस गई।
1: अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आप, मेरी लड़ी है।

कुछ प्रसिद्ध भक्त कवियों के सुंदर दोहे, उन सब का संग्रह किया है और एक भजन का रूप दिया है।

कवि ने इशारा किया है संसार रूपी चक्की की ओर। इस चक्की के भी दो पार्ट हैं, धरती और आकाश। दिन रात ये चक्की चलती रहती है।

रहीम कहते हैं, किसी बड़े आदमी से मित्रता हो जाए तो अपने छोटे मित्र का तिरस्कार न कीजिए, उसको भूलिए नहीं।

रहीम के अनुसार प्रेम एक कच्चे धागे के जैसा होता है, बड़ा संभालना पड़ता है। देखिए क्या सुंदरता से वर्णन किया है।

जानते हैं रहीम कृष्ण भक्त थे, उनके स्वभाव के बारे में एक बात बहुत कम लोग जानते हैं।

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne 10 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने भी बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबिल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

पुण्य संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर हॉनर ट्यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

जिया जिया जिया रे, फिल्म का नाम है जब तक है जान। उजाला रेडियो है, ये सुनो वालों, मैं हूँ अमित जयराम और ये है दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो उजाला रेडियो। लेट्स किक ऑफ दिस आवर विद हिलके हिलके गाना। और जो भी आप इस वक्त कर रहे हैं, ik hoop dat je lekker aan het genieten bent van de heerlijke gevarieerde Ghana. Filmke naam is What's Your Rashi?

है सेलिब्रेशन नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से चांद को बोलो उतरे फलक से अड फिल्म बजरंगी भाई जान Geweldige feel-good Ghana. Het is de stem van niemand minder dan Mika Singh en gebracht uit de film Bajrangi Bhaijaan. Ja, de mensen die me kennen, die weten dat ik een zwak heb voor de jaren 90 Ghana. Our job here is wat karre, hè? Ja, trekje. En jaren 90 Ghana makes everything better.

बच के तू रहना जरा बारा तरपाए बिछुआ। फिल्म का नाम है 1920 और साल 2008 में निकाला गया है ये फिल्म, ये मूवी 1920। And it was the same funny what made it done Shubha Mudgal. And you heard him here by Ujala Radio. Enjoy the biggest Hindustani mix. और वो भी आपका बेस्ट फ्रेंड अम्मी जयराम के साथ। ये वही धूरत खा तो उज्जाला रेडियो कीपिंग यू ऑन द मूव। एक से एक हिल के गाना। द परफेक्ट सॉन्ग फॉर द परफेक्ट वेदर। और गाना का नाम है रात का नशा।

रात का नशा हिल का पार्टी सॉन्ग, फिल्म का नाम है पंजाब नहीं जाऊंगी। ये हो तुम हीर बै दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी रेडियो उजाला रेडियो। वट एवर यू डू याद रखिए कीप इट ऑन उजाला। और ये है फिल्म मेड इन चाइना, द स्टेम फॉर नेहा कक्कर, दर्शन रावल इन सचिन जिगर, और गाना का नाम है उड़हनी। ओक वीर इन हिल का फील गुड धमाका, सब से एंजॉय।

उड़हनी उरे उरे रे, अखियां मुरे मुरे रे, मेरे सीने में कुछ कुछ ठाए। हिल के धमाका सॉन्ग, हिल के हिट गाना। En dat was de stem van niemand minder dan Neha Kakkar en Darshan Rawal uit de film Chinatown. और ये है इस घंटे का हिट गाना। मुझे आशा है कि आप गाना को पसंद और एंजॉय करेंगे। फिल्म का नाम है वॉर। द स्टेम फॉन विशाल दत्तलानी, बेनी दयाल इन दिस हीलिक हिट गाना। जय जय शिव शंकर।

छोर के सारे किंतु परंतु नाच मेरी जान हो के मगन तू, छोर के सारे किंतु परंतु। फिल्म का नाम है ट्यूब लाइट और गाना का नाम है नाच मेरी जान एंड सॉन्ग ऑफ भाईहुड में द रियल लाइफ ब्रदर्स सलमान खान एंड सोहेल खान in de hoofdrol in de film Tube Light. Je hoort hem hier en alleen hier bij de one and only Ujala Radio. Jahab, Joab, of wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van de dag vandaag. Geniet lekker samen met Ujala Radio. Orwobhi, Aapka, best friend, kesaat. Amit Jairam.

मैं भी सरफिरा तू भी सरफिरी, हिल के फील गुड गाना। फिल्म का नाम है कट्टी बट्टी विद इन द होफ थ्रो नीमा मीनादान कंगना रनौत एंड इमरान खान। और ये है फिल्म एक पहेली लीला और गाना का नाम है एक दो तीन चार।

0: आप हर एक जो इस वक्त उजाला रेडियो का प्रोग्राम को सुन रहे हो।
1: आज नहीं तो नचना तो फिर जब नचना।
0: आपको हम धन्यवाद कहना चाहते हैं यार कि आप जो सुन रहे हो। और अगर आपकी जन्मदिन सालगिरह आज है ना, या तो आने वाले दिनों में विवाह संस्कार शादी होंगे, तो फरमाइश आप दे सकते थे यहाँ उजाला रेडियो पर। मारतीस नो इतला तू जाने हित बैल करके रिखल कर ले 020-409-0807 en mailtje sturen is sneller. Stuur een mailtje naar info@ujala.nl.

या उजाला रेडियो का प्रोग्राम जारी करते हुए सुनने वालों, अब एक फिल्म से गीत। फिल्म का नाम है हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया। गाने वाले जावेद अहमद, शारिफ तौशी एंड अरिजीत सिंह।

और हाँ, उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अब अगला गीत फिल्म अग्निपथ से होंगे, अजय अटोर एंड श्रेया घोषाल से।

मैं हूं सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां तक हम आप सभी को बहुत ही प्यार से दुलार से स्वागत कर रहा हूं आज का प्रोग्राम में। चाहे जहां पर आप लोग प्रोग्राम को सुनते होंगे वेलकम। आज का प्रोग्राम में कुछ मिले जुले संगीत से हम आप सभी को खिदमत करने वाला हूं। और चलिए पहला गाना जो आप सभी को लिए हम ला रहे हैं

गल यार नजर नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरी तुझे, इतना ना मुझे चाहो यार। और इस तरह से खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। और यू आर उजाला रेडियो का दफ्तर का फोन का नंबर है 9204090907 पर आप लोग तार कर सके हैं।

और इस तरह से आप लोग का गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे, जोबिन जी के आवाज में ये खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, जादू ही जादू। और चलिए इस बार तो जोबिन और पायल जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे,

जब प्यार होना ही था तो प्यार हो गया। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने। और चलिए इस बार देखा जाए प्रीतम एंड श्रिया जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे यार। तो जाने तो उजाला रेडियो का दफ्तर खुला रहता है सोमवार से लेकर शनिवार तक दिन में सुबह से 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक। फनमान रफ्तो तो मेरे साथ रख फन तीन मोर खसोद्री यूरे ने मिला। जहां का फोन का नंबर है 9 3 9 9 9 0 7 पर आप लोग तार कर सके हैं।

कितना कितना कितना सुंदर गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने रसिया एंड वो भी प्रीतम एंड श्रेया जी के आवाज में रसिया और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है और गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे

वेल चोरी चोरी दिल दिया था एंड चोरी चोरी दिल लिया। उदित नारायण एंड अलका याग्निक जी के वंश में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। जब भी चोरी चोरी में मजा, प्यार में मजा आता है। चोरी चोरी दिल दिया था एंड चोरी चोरी दिल लिया था यार।

वेल यार, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, फिर भी नाम तेरा जुबान पर आ रहा है। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे कुमार सानू जी के आवाज में।

वेल यार, दिल है तुम्हारा, धड़कन है तुम्हारी, तुमको सिर्फ तुमको हम चाहेंगे यार। अलका याग्निक एंड कुमार सानू जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं।

वेल वेल यार, मधोस दिल की धड़कन। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, अति सुंदर गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है।

पर मैंने भी ना सोचा था कि एक दिन आप मुझे यूं मिल जाएंगे। वेल यार, उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, हमारे प्यारे सुनने वालों और

0: और चलिए अब की बार एक और ऐसा है गीत जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं और आशा है कि
1: live vanuit de Hoofdstad.
2: बॉलीवुड के सबसे सुनहरे दौर को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाइए। उजाला प्रस्तुत करता है ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड। मौसमी ओबेरॉय, शेखर कुमार, अयान मुखर्जी, बॉय के दाता दिन और निजाम वागिद हुसैन। लाइव संगीत के साथ मुंबई बीट्स, यादगार धुने, पुरानी यादें और भावनाओं से भरी एक शानदार शाम। शनिवार 19 सितंबर को मीरवाड एम्स्टर्डम में। अपने टिकट अब

अब उजाला रेडियो का प्रोग्राम जारी है सुनने वालों, और प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे उदित नारायण और साधना सरगम जी।

पहला खुमार। फिल्म का नाम जो जीता वही सिकंदर, उदित नारायण एंड साधना सरगम से आप सुने जो जीता वही सिकंदर। हाँ, फिल्म कसूर का एक गीत

और मोहब्बत हो ना जाए। कुमार सानू एंड अलका जी, इन दोनों से आप सुने फिल्म कसूर का गीत। उजाला रेडियो है और जानकारी चाहिए आपको ना तो वेबसाइट पर आप देखें, उजाला.nl।

उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम यहीं से हम शुरू कर रहे हैं कॉफी चाय मिदक शो सुन वालों वेलकम अलमाओ अभी थोड़ी देर में हम बात करने वाले हैं मैं आनंद चंद्रिका सिंह आज के समाचार के बारे में फ्रॉम द अफलोप दागे या कोमेंड दागे के लिए जो समाचार है एंड लुख्तगो ऑन द वेब आज के प्रोग्राम में एक बजे तक ये प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं आपके लिए कॉफी चाय मिदक शो और कल हमने वादा किया थे ना कि आज हम जरूर बनाने वाले हैं तो वादा हम तो निभा रहे हैं जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा तो वेलकम अलमाल बाय यू आर उजाला रेडियो उजाला के मिदक शो कॉफी एंड चाय ई गनवा तो सुनिए ई गनवा इतना मोई गाना हैगा कि जीवन के हर मोड़ पे फॉर द रेस्ट मुझे मार्शल एफ एफ लाइव

0: मिल जाएंगे हम।
1: जिस जीवन के हर मोड़ पे अगर एक अच्छा मोड़ हम सफर मिल जाए तो जिंदगी गुजर जाएगा बस आराम से। तो
0: तू वही है जिसको ढूंढे कब से,
1: जिस जो तू कौन के खोजत हुई है तेरे मोई हम सफर खोजिए जिसके साथ तो जीवन मोई से कटी
0: दिल की राहें।
1: किशोर कुमार की आवाज में है और ये भी फिल्म का नाम है झूठा कहीं का, झूठा कहीं का। और ये गानों में या यू हूफ एनी गेन सॉन्गर टू सिंग, देयर कम्स अ स्टुकी वेयरिंग इट ऑन कमेसिंग एक्ट वेल नहोरी दान पापा पापा पापा वगैरह वगैरह वगैरह। माँ गनवा मोह है गा, गनवा के साथ भी तू गा सके हैं। म्यूजिक इज फ्रॉम आर डी बर्मन और गाने वाला है किशोर कुमार। ये है कॉफी चाय मिदा शो।

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो अब उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो अब उजाला रेडियो।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने।

उजाला रेडियो आपकी आवाज आपके गीत और संगीत आपका मन प्रिय रेडियो स्टेशन ये सब मिलाकर बनती है उजाला रेडियो।

बीन कोटरावा तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम यहीं से हम शुरू करें हैं कॉफी चाय मिनक शो सुन वालों वेलकम अलमाओ। अभी थोड़ी देर में हम बात करने वाले हैं मैं आनंद चंद्रिका सिंह आज के समाचार के बारे में फ्रॉम द अफलोपन दागे या कोमेंड दागे के लिए जो समाचार है एन लुख्तगे ऑनडरवेयर आज के प्रोग्राम में एक बेहतर ये प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं आपके लिए कॉफी चाय में द शो। और कल हमने वादा किया थे ना कि आज हम जरूर बनाने वाले हैं तो वादा हम तो निभा रहे हैं, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। तो वेलकम अलमाल बाय यू आर उजाला रेडियो उजाला के मिदा शो कॉफी एंड चाय। ई गनवा तो सुनिए, ई गनवा इतना मोई गाना हैगा कि जीवन के हर मोड़ पे फॉर द रेस्ट मुझे मार्शल एफ एफ लाइव।

0: दिस जीवन के हर मोड़ पे अगर एक अच्छा मोय हम सफर मिल जाए तो जिंदगी गुजर जाएगा बस आराम से तो
1: तू वही है जिसको ढूंढे कब से
0: जिस जो तू कौन के खोजत हुई है तेरे मोय हम सफर खोजिए
1: मिल जाए
0: जिसके साथ तो जीवन मोय से कटी किशोर कुमार की आवाज में है और ये भी फिल्म का नाम है झूठा कहीं का झूठा कहीं का और ये गानों में या यू हैव एन गेन सॉन्गर टू सिंग द कॉम्स इन स्टुकिया वरिंग इट ऑन कमेसिंग एक्ट वेल नहोरी दान पापा पा पापा पा वगैरह वगैरह वगैरह मां गनवा मोय हैगा गनवा के साथ भी तू गाय सके हैं म्यूजिक वेस फ्रॉम आर डी बर्मन और गाने वाला है किशोर कुमार ये है कॉफी चाय मेरा शो

live vanuit de Hoofdstad. उजाला रेडियो देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो दे अबे प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टलफेन से परिवार हेंद्रक जियावन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 79 साल के आयु में निखन से फंतखियार और सार श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला के बहनोई, रोका साढ़ू भाई, लड़कन अश्विन और प्रवीण जियावन के फुफा अजमी जियावन का मौसा इपन बरख का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन के मृत्यु लैचकंदम में हो गई है। अम्स्टलफेन से परिवार हेंद्रक जियावन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 79 साल की आयु में निखन जीवन तक यार और श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला के बहनोई, रोका साढ़ू भाई, लड़कन अश्विन और प्रवीण जियावन के फूफा अजमी जियावन का मौसा इपन बरख का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन के मृत्यु लैचकंदम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने की मौका है शुक्रवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक और शनिचर के रात में 7:30 बजे से 8:30 बजे तक ओंज जोरख के मुर्दालय त्रिपस्त्रात 139 दनहाख में। अर्थी के दाह क्रिया किए जाएंगे मंगलवार, आने वाले मंगलवार 22 तारीख सितंबर के दिन में 4:15 बजे दिन्स दखानस्तांद क्वर्तोफरफीर क्रेमाटोरियम एकलनबर्ग एकलनबर्ग लान 7 रेसवेक में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार राम खेलावन और परिवार जियावन और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

0: बंदूक मेरी लैला। फिल्म का नाम है जेंटलमैन और आवाज है ऐश किंग एंड जिगर सराया। ये है उजाला रेडियो, अमित जयराम के साथ। एक विंश एन हेल फाइन दाग वाचो का ना दूं बेंट जहां भी हो आप। गनीत लेकर फान ये दाग एं गनीत लेकर फान उजाला रेडियो, दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो। तो जाने है तो हैज टू बी उजाला रेडियो।
1: गर्ल शेक योर हीट ऑन अ ब्लास्ट, बेंड डाउन एंड ब्रोक द स्पॉट, डू इट गर्ल योर बॉडी।
0: हेलके गाना गेसेलेक्टेड ऑफ दिस मोमेंट आई द फिल्म चॉकलेट भीगा भीगा सा।

और अब मैं तो मर गया, कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क दिल में अब भर गया। हिल के रोमांटिक गाना, हिल के रोमांटिक ट्यून, फिल्म का नाम है मौसम और आवाज है शहीद मलैया। हिल के गाना एंड यू हर्ड हिम हियर बाय द वन एंड ओनली उजाला रेडियो। जहां भी हो आप, वहां जो करना तुम बैंड, खनीत लेकर फन द हिल के गफारियत गाना। मैं हूं अमी जयराम en samen genieten we van de heerlijke, heerlijke Ghana. Hit Ghanuka, mega hit kesat.

बजकर 8 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो है ये और दिल की आवाज, यहां से हम आराम करेंगे। मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय सुनने वालों को। आज ये बृहस्पतिवार 17 तारीख सितंबर का जो बहुत ही खूबसूरत रात्रि है, तेरा और मेरा साथ रहेगा, आपका और मेरा साथ रहेगा, और वो भी अब से रात्रि में 11 बजे तक। तहदिल से स्वागत है मेरे प्यारे सुनवालो, आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और अदा परसे। आप ही का मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनवालो। 3 घंटे आपका दिल हम बहलाएंगे विद ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स, और उनके साथ साथ कुछ डर भरे नगमाएं भी आज की प्लेलिस्ट में शामिल है। कल हम आपसे कहे थे कि 300 गाने लगभग आज की प्लेलिस्ट में है, उसी में से निकालेंगे, और मैं देखता हूँ काफी पुराने नगमाएं भी है और कुछ नए नगमाएं भी है, एल्बम से निकाला हुआ भी नगमाएं हैं इसमें, और ज्यादा से ज्यादा तो फिल्मी सॉन्ग्स हैं। हमारे ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सिनेवालों स्टूडियो में अवश्य आप ऐप कर सकते हैं, और वो भी स्टूडियो का व्हाट्सएप पर 020-363-0000 और रहे दफ्तर की कार्रवाई मेरे प्यारे सिनेवालों सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे अगर आप तार करना चाहोगे तो ये मुमकिन है। आपकी फरमाइश, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, आपकी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहोगे 020-909-0807 दफ्तर का तार है 020-909-0807 सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे आप इसे तार कर सकते हो। और मेल के जरिए आप उजाला रेडियो को तो 24 घंटे 7 दिन लगातार किसी भी वक्त किसी भी पल किसी भी धन आप जहां पर भी होंगे आत्मा कालमानी में रहते, जब भी आपको उजाला रेडियो का जरूरत पड़े तो आप मेल कर सकते हैं info@ujala.nl। अमित खन्ना का एक बहुत ही खूबसूरत पॉपुलर रोमांटिक सॉन्ग की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनवालों। ऐसे हो जाए कि आप किसी को देख लें और देखते ही, क्योंकि वहां से तो प्यार शुरू होता है आंखों से, कि आप देख के और आपके दिल ने कहा कि अरे ये वही है, और ये जो आपने देखा अगर उन्होंने इजहार किया, क्योंकि उनकी आंखों में सीधे उनके दिल में भी तार का जो लाइन है वहां जाकर भी उनका दिल भी धड़का दिया, तो कितनी खूबसूरत बात है। बहुत कम लोगों के नसीब में होता है ये बात मेरे प्यारे सुनवालों कि एक दूजे को आप देखें, देखते ही प्यार हो जाता है। अमित खन्ना किशोर कुमार का एक नगमा जो अमित खन्ना जी ने लिखा, आज का ओपनिंग सिलेक्शन पेश करता हूं हियर ऑन योर दिल की आवाज में। एंजॉय योर इवनिंग मेरे प्यारे सुनवालो। बहुत बारिश हो रहे हैं और स्टूडियो के बाहर भी मैं देख रहा हूं वही बारिश वाला ऊपर दिखा रहा है अति सलमान खरे से वॉलकर मार्बिन एंड हीरो प्यूअर आलमाल मोइरिचस और कालिये।

किसी को ना पता चला क्या हो गया, ऐसी मिली नजरें कि दिल खो गया, चुपके से वो पहलू में आ, बोली मुझसे अरे अरे अरे। आज हाँ मेरे प्यारे सुनने वालों, पहली बार एक लड़की ने मेरा हाथ पकड़कर बोली अरे हाँ। खूबसूरत गीत, रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, आज का ओपनिंग सिलेक्शन अमित खन्ना जी के कलम से लिखा हुआ है और आवाज का जादू किशोर कुमार, फिल्म का नाम और कौन। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सुनने वालों, प्रोग्राम दिल की आवाज लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोटरडम से फिर एक बार पेश हो रहे हैं आपकी खिदमत में। 9:08 और हम आपको ले चलते हैं एक एल्बम के ओर जिसमें से निकालेंगे खूबसूरत नगमा द टाइगर, कुमार सानू और जोचना की आवाजें। तुम्हें जब से देखा मेरे सनम,

ना एक पल बिछड़ने की आए घड़ी, बस गुजरे तुम्हारे प्यार में ये मेरी जिंदगी। तू ही मेरी चाहत, तू ही अरमां है, मुझे तुमने चाहा ये हमारा करम, कि तुम्हें जब से देखा है ओ मेरे सनम, हुआ प्यार तुझसे। बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, और अपने खूबसूरत रोमांटिक आवाजों में मिलकर गीत गाए हैं कुमार सानू और जोचना जी, हियर ऑन यू आर दिल की आवाज में। मेरे प्यारे सुनने वालों, रोमांटिक सॉन्ग्स जो हो रहे हैं तो चलो एक और सही, जयदीप सानी जी का लिखा हुआ कुछ इस तरह का नगमा, काफी पॉपुलर है ये नगमा उस वक्त, और यकीनन अभी हम चलाएंगे तो आप ही पसंद करेंगे, कि कभी कभी दिल क्या क्या कर जाते हैं प्यार में, आपको भी मालूम नहीं कि क्या हो जाता है, आपके हाल किस तरह से बदल जाता है। कभी कभी आप उल्टे सीधे बातें करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, पागल सा आप पर छा जाता है, दीवाना सा आप हो जाता है। कैसे बोले चिजवा, गायत्री गांजावाला जी और शान की खूबसूरत आवाजों में जयदीप सानी जी का लिखा हुआ एक नगमा पेश करने जा रहा हूं, हियर ऑन यू आर दिल की आवाज में।

मीठी है ऐसी वो, ऐसे चल के जैसे जन्नत में रहती है और देखती है सबको, ऐसे जैसे सबको वो सहती है, पर गुस्से में जो आए और आंखें वो दिखाए, लहराते लहराते गलती से मुस्काए, तो बस हमारा ये दिल गोस ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो, शान और गायत्री गांजा वाला जी की आवाजें, खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग की हर एक शब्द अल्फाजे जयदीप जी के जरिए, जयदीप सानी जी के जरिए लिखा गया है। सलाम नमस्ते फिल्म का नाम। और मेरे प्यारे सुनने वालों, बेहद खुशी है हम क्योंकि चून किए हुए हैं वो जो शुरुआत से आज तक हमेशा साथ दिए हैं, और वो है सफूरा सुब्राती जी। तो सफूरा जी को हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेल। आज आपके खबर मिला बहुत दिनों के बाद, दिल आपने खुश कर दिया। लेकिन फिर भी हम आपको ये कहेंगे कि ये जो प्रोग्राम है मेरे प्यारे सुनने वालों, दिल की आवाज, शुरुआत से अब तक हमने बहुत सारे प्यार वाले नगमाएं चलाए हैं, एक दर्द भरा गीत क्यों ना हो जाए आपकी बार। द ग्रेट मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ, बापरे इनके हाथों से इतनी सारी खूबसूरत नगमाएं लिखा गया है, इनके प्रोग्राम हम सजा चुके हैं बैक टू द फ्यूचर में, पता नहीं कब, लेकिन नतुलक ना सो विल तैत नतुलक उनका प्रोग्राम कभी फिर एक बार हम दोहराएंगे। लेकिन बहुत सारे नगमाएं हैं ऐसे इनका लिखा हुआ जो आप पसंद करते हैं, और शायद ये दर्द भरा नगमा आप भी पसंद करेंगे। आईफी जहांगीर डंके ओकवेल आपके आपके लिए आईफी जी भी शुरू से सपोर्ट करते हैं, बस आपका प्यार, आप सभी का प्यार मुझे जोश देता है कि हम आज तक प्रोग्राम बना सकते हैं। आपका प्यार नहीं रहा तो समझ लो हम भी नहीं रहेंगे, और ना हम बना पाएंगे खूबसूरत प्रोग्राम आप सभी के लिए। तो डंकी वाला आईफी आपको भी, आईफी जहांगीर जी आयतम सदम। मैं लता जी को पेश करने जा रहा हूँ मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ नगमा, और लता जी क्या गाएंगे अपनी खूबसूरत आवाज में, संगीत की देवी की आवाज में ये नगमा।

या तड़से कजरा बरसे आए ना तुम साजना, ढल गई रैना बुझ गई बाती, मैं खड़ी आपकी राहें देखना वो भी अंगना। खूबसूरत गीत दर्द भरा, लेकिन दर्द भरे नगमाए में हमेशा मैं यही कहता हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, बहुत प्यार छुपा है। प्यार ना हो तो दर्द नहीं आपको आएगा। ये है मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत, जो संगीत की देवी लता जी ने गाकर सुनाए हैं। फिल्म का नाम फिर वही रात। जरा मैं देखूं घड़ी की तरफ तो मेरे प्यारे सिन वालों, हो रहे हैं 9:45 का वक्त, 4:15 नहीं है मेरे प्यारे सिन वालों। और इस दर्द भरे गीत के बाद चलो फैज अनवर जी एक एल्बम से निकाल रहा हूं, एल्बम का नाम है जानम, और जानम का एक नगमा द नेम दैट स्पेल्स मैजिक, उदित नारायण की आवाज। होता है ना कि अगर आंखों ने देख लिया कि अरे बाप रे क्या चीज है, बहुत खूबसूरत, भगवान ने अपने हाथों से बनाया होगा इन्हें। लतीश फीस अफेयर्स है रसनी तालीम फनोत मन नरम फ्राउ मरु का नरसुम। और अगर आप देख रहे हैं उन्हें और वो बहुत ही प्यार से तुम्हें भी देख रहे हैं, तो आप भी सोचते होंगे अरे बाप रे इस तरह से प्यार तो हमें ना देख, क्योंकि हम तुम्हें क्या कहें, क्या हो जाता है हमारी ये दिल में। उदित नारायण की आवाज मेरे प्यारे से नॉल पेश करता हूं ये नगमा।

ना हम जानते तुम्हें और ना पहचानते तुम्हें, ये अच्छा नहीं है जो तुमने किए होश गुम। तुम्हें ये खबर है क्या साथ तुमने की बड़ी खूब दिल लगी, मेरे साथ तुमने जो की तुम्हारा तो क्या गया हमारा ये दिल गया। तो अब इस दिल को सनम कहां ढूंढेंगे हम, क्योंकि इस तरह तुमने प्यार से मुझे देखा सनम। The name that spells magic, Udit Narayan, मेरे प्यारे सनम फैज अनवर का लिखा हुआ नगमा हमने आप तक पेश किया है। मेरे प्यारे सुनो, तमाम सुनने वालों के लिए, तमाम एपर्ट्स के लिए, और जैसे कि हिरेंद्र और चित्रा जी और मार्स ब्रुक, कैथरीना जी है एम्स्टरडम, उषा जी है दनहाग, सुशीला चंद्रिका सिंह जी है एम्स्टरफिन, इल्स जी है देन हेल्डर मगर इस वक्त मॉरिशस में है, सेफ फ्लाइट बैक इल्स जी, और सत्या जी है एम्स्टरडम, दंक यू लिवेल। हमने गीत को तैयार करके रखा है मेरे प्यारे सुनो, एक डर भरा लेकिन बहुत प्यार इसमें छुपा है। आप सभी के नाम और इस गीत के बाद ब्रेक है।

मुझको क्या हुआ है, अरे क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले या मैं अप बन गया हूँ, कोई मिल गया मेरा दिल गया, क्या बताऊं तुझे, अरे यारो मैं तो हिल गया, मैं तो हिल गया, कोई मिल गया। बहुत ही खूबसूरत गीत, पॉपुलर सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, समीर का लिखा हुआ एक एक शब्द जो मिलकर गाए हैं द नेम दैट स्पेल्स मैजिक, उदित नारायण, कविता कृष्ण मूर्ति जी और अलका याग्निक जी। कुछ कुछ होता है फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुनो, चुन किए हुए हैं जो बहुत सालों से भी मुझे सपोर्ट करते हैं और हमेशा चुन किए करते हैं, श्री नाम का प्रिंसेस राज, थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए, एन फन हर्त खफेली तीर्थ, मैं चिकलेन सुन विहान रामदीन सुलोक। वैसे तो ये हमें करना नहीं चाहिए लेकिन आपके लिए जरूर, क्योंकि आप हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो चलो ये गीत आपके नाम करता हूं, एंजॉय।

तेरी पलकों के तले ये जो दीपक है जले, यूं ही जलते रहे सदा, है हमारी यही दुआ। रविंद्र जैन जी का मास्टर कंपोजिशन, जसपाल सिंह की आवाज, और ये था फिल्म जिद का एक नगमा, फिल्म जिद। आइलिन जी, आइट हार्लेम, थैंक्यू वेल आपके ऐप के लिए। और माइस एमस्टरडम का बोली रे, बहुत बारिश हो रहे हैं, क्या करी, एक तय चरा कि बहुत झोरा, तो भी सब लोग क्राह कर रहा कि देखो ना, ऐसे जब रहेंगे तो पानी के जो पीने का है, समुद्र का पानी, बोट फाट, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, देख अब पानी बरस रहे तो ये भी ना ठीक। मिस्किन है वो तो फीलिंग कढ़ैया का खेत, तू जाने जो बचे हैं बस भात मन में गिरा दे वे, पाका हो जाए एक सोर तू लता जी नीमू तो दून माइस, आप नहीं करते तो ऐसा मौसम नहीं आता, लेकिन ये मौसम जो है मेरे प्यारे सुनने वालों बड़ा ही बेमान है, और बेमान मौसम यूं ही नहीं आते हैं, और जब आते हैं तो कोई तूफान भी आने वाले हैं इस तरह के मौसम में। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत और सुरों का बादशाह द लेजेंड पटमा श्री मोहम्मद रफी साहब जी, दंकी वाल आइलिन, दंकी वाल माइस आपके ऐप के लिए। ये दिल की आवाज है मेरे प्यारे सुनने वालों, तू जाने दो।

हुआ है, हुआ कुछ तो नहीं है। बात क्या है पता, कुछ मुझको नहीं है। अगर मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी भी कोई खता नहीं है, क्योंकि खूबसूरत है तू और ये रुत जो है बहुत जवान है। और देखो ना, आज काली काली ये घटाएं डर रही है और ठंडी ठंडी आहें हवा भर रही है। सभी को क्या क्या गुमा हो रही है और हर कली हम पे शक कर रही है। ये कली जो है शक कर रही है और फूलों का ये दिल भी कुछ बदगुमान भी है। और आखिरी में क्या लिखा है आनंद बख्शी जी ने, हुआ ये आखिरी जो लाइनें हैं तो मुझे एकदम ही मार ही डाला। कमाल का अल्फाजे हैं ये कि ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, देखो दिल जो मेरा है किया मैंने तेरे हवाले। अब तेरी मर्जी पे अब बात जाकर ठहरी, अब जीने दे चाहे तू मुझे मार डाले। तेरे हाथों में अब मेरी ये जान है। हाय हाय हाय हाय हाय आनंद बख्शी जी, कमाल है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आनंद बख्शी जी। हम हमेशा भूल जाते हैं, गीत को हम सुनते हैं, रवि जी की आवाज़ हम सुनते हैं, और गीत अगर हम सुने तो धर्मेंद्र को भी हम नज़रअंदाज भी कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने बड़े पर्दे पर ये गीत को पिक्चराइज किया गया है। लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि खूबसूरत नगमाएं जो हम बड़े पर्दे पर देख रहे हैं, कोई बड़ा स्टार उन पर अपना होंठ हिला रहे हैं, और एक महान कलाकार की खूबसूरत आवाज में गीत गाया जा रहा है कि किसी ने तो भी अपने गोल्डन हाथों से, अपने कलम से लिखा है खूबसूरत नगमा। और ये खूबसूरत नगमा को भी किसी ने ढूंढ लिया है, म्यूजिक डायरेक्टर। 5 उंगली मेरे प्यारे सुनने वालों एक मुट्ठा बनती है। अच्छी इमातन तिखे में चिवाइस फिंगर जो हम काफी इस्तेमाल करते हैं। दन खाती निक्स वन फूला, मौके एगो फैज से तू कुछ करिए। तन ही तत फिल्मेर पावर फिल्मेर क्राफ्ट, तू जाने तो। ये था फिल्म लोफर का एक नगमा मेरे प्यारे सिनेमा। इस गीत के बाद जबकि रोमांटिक सॉन्ग हो रहे हैं तो चलो गुलशन मोहन अभी कुछ इस गीत के बाद शायद मैं आनंद बख्शी जी का एक और खूबसूरत गीत पेश करेंगे सीकर वेत। लेकिन गुलशन मौरा जी भी कमाल के नगमाएं लिखे हैं और उनका लिखा हुआ एक रोमांटिक सॉन्ग अमित कुमार और नाइटिंगेल आशा जी, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग हियर दिल की आवाज में। अप यू आर मेरे प्यारे सुनवालो एंड इट इज पेना हाफ दिन। अब तो हमको एक दूजे का हर पल साथ निभाना है।

अब तो हमको एक दूजे का हर पल साथ निभाना है, ओ तेरे संग ही है जीना और तेरे संग मरना है। बहुत ही खूबसूरत प्यार भरा नगमा मेरे प्यारे सुन वालों, गुलशन बावरा जी का लिखा हुआ, नाइटिंगेला शाह जी और अमित कुमार की आवाजें, फ्रॉम द मूवी इंद्रजीत। ये दिल की आवाज है मेरे प्यारे सुन वालों। हमारी नजर में एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग नजर आए हैं जिसमें कुछ छेड़छाड़ भी है, और तू जाने छेड़छाड़ कौन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो लड़के करते हैं, छेड़ते हैं लड़कियों को। आनंद बख्शी जी वादा के मुताबिक इनका लिखा हुआ नगमा पेश करने जा रहा हूं, एक गीत जो हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और संगीत की देवी लता जी मिलकर गीत गाएंगे। ये नगमा पेश करता हूं दिल की आवाज में, एंजॉय मेरे प्यारे सुनने वालों।

बदले में दुपट्टे के छला दे, अंगूठी दे, कोई तो निशानी होनी चाहिए। मेरे दिल दीवाने को लोगों को सुनाने को कोई तो कहानी होनी चाहिए। अच्छा तू ये वादा कर कि कल आएगी मेरे घर, और अगर ना आई तो ये यारी टूट जाएगी। अरे भैया अच्छा कल तो आने दो, आज तो जाने दे, वरना तेरी ये प्यारी रूठ जाएगी। मैंने कहा जिद छोड़ दे, तू दिल मोड़ दे ओ सनम। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये प्यार भरा छेड़छाड़ सॉन्ग जो मिलकर गाए हैं हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और संगीत की देवी लता जी। रिक्शा वाला फिल्म का नाम। अभी एक गीत के बाद आनंद बख्शी जी का एक और खूबसूरत गीत पेश करने जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो एक बार शहीन जी का लिखा हुआ एक नगमा। क्या नगमा इन्होंने लिखा है, इकबाल जी ने बहुत खूबसूरत गीत लिखा है मेरे प्यारे सुनने वालों। और द टाइगर कुमार सानू और अलका याग्निक मिलकर गीत गाएंगे। इन्होंने ये लिखा कि ये तेरा चांद चेहरा बनाने की खातिर हजारों सितारों को तोड़ा गया है, तेरी इस बदन को सजाने की खातिर तो लाखों गुलाबों को चोरा गया है। और क्या क्या इन्होंने लिखा और क्या गाने वाले हैं द टाइगर कुमार सानू और अलका याग्निक। सुनाने जा रहा हूं हियर ऑन यू आर दिल की आवाज में।

तेरा चांद चेहरा बनाने की खातिर हजारों गुलाबों को तोड़ा गया है, और तेरे इस बदन को सजाने की खातिर हजारों सितारों को जोड़ा गया है। तुझे दिल की नजदीक लाने की खातिर तेरे नाम से मेरा नाम जोड़ा गया है, और तेरी बाजुओं में समाने की खातिर जमाने की रस्मों को हमने तोड़ा गया है। या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, इकबाल शहीन जी जो एक महान कवि है, इनका लिखा हुआ ये गीत अपनी खूबसूरत आवाजों में मिलकर गाए हैं द टाइगर ऑफ बंगाल, कुमार सानूवाल का याग्निक। फिल्म का नाम दरार। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं इस घंटे का एक आखिरी गीत पेश करेंगे, और बेनिक ईव लिच ईव क्वेट ओ हीरे सतिया या। एक नगमा समीर का लिखा हुआ मेरे प्यारे सुनने वालों, और समीर का लिखा हुआ ये गीत के बाद आप सुनेंगे 10 बजे की इश्तियारी, और तमाम सूचनाओं के बाद सेवा में हम हाजिर रहेंगे। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल।

रात में प्यारा साथी है और रात भी ये मढ़माती है, ऐसे में अब तुम ही कहो नींद किसे कब आती है। शली शैलेंद्र जी का लिखा हुआ नगमा, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज, दी दी दी दिल दौलत दुनिया फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुनोलो, 10:09 गुजर चुके हैं। ऐसे स्नेक मुनि तो ओवर क्लॉक फन 3 रात्रि में 11 बजे तक आपका साथ हम देंगे। और इस घंटे में, क्योंकि हमारे हिस्से का ये प्रोग्राम का आखिरी घंटे है, दिल की आवाज जो लाइफ एंड आर क्यू आर के स्टूडियो रतनाम से पेश हो रहे हैं, डन खावनी मेर बोव दयार नहीं 80, 70 और 60 एमिस्की वाल नो खावर, उसी में हम पढ़ेंगे वहां वत मिंडर न्यूली चिसराए 1982 की ओर आपको ले चलेंगे, जिनका खूबसूरत आवाज है अनवर हुसैन, इनका गाया हुआ एक नगमा डट भरा, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ एक एक शब्द पेश करने जा रहा हूं कि मोहब्बत अब तिजारत बन गई और तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। जेनी दंकीवेल फोर ये एपिय या एक मैरथन एन खीम तू जाने तो होता है। दंकीवेल जेनी फोर अ टफ सेमन एंजॉय।

तिजारत बन गई है और तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। ऑल टाइम ग्रेट दर्द भरा गीत मेरे प्यारे सुनालो, जिसका एक एक शब्द एक एक अल्फाज आनंद बख्शी जी के कलम से लिखा गया है और आवाज का जादू अनवर हुसैन, फिल्म का नाम अर्पण। एक और डर भरे गीत और मुकेश जी का गीत हमने तो पेश नहीं किया है, कमाल है। पहला मुकेश का नगमा पेश करने जा रहा हूं और अभी कुछ देर के बाद जरूर से जरूर एक और पेश करेंगे। हाँ जी, मुकेश जी का ये नगमा डर भरा द ग्रेट इंदवर जी का लिखा हुआ नगमा है और ये फिल्म दिल ने पुकारा का एक नगमा है। मेरे प्यारे सुनने वालों, बात यह है कि आशीष सूद किसी के लिए कुछ अगर दिल में कुछ हो तो इशार कर लेना चाहिए, बता दू, पता चल जाएगा कि वो भी उस तरह का फीलिंग्स आपके लिए रखती है दिल में अपने आप या नहीं, और अगर नहीं तो बता देंगे बात खलास। लेकिन दिल ही दिल में बात छुपाकर इजहार ना करना, कभी कभी ऐसा हो जाते हैं कि गाली निकल जाता है, देर हो जाती है। याद आना केवल सिलख खान ब्लाइफ दुन मार दल इस तुखम बीची एहस खुलत। मुकेश जी की आवाज में इंदवर का लिखा हुआ खूबसूरत दर्द भरा गीत पेश करने जा रहा हूं दिल की आवाज में। हीरो निवार

अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो गम है और कुछ आपकी फितरत में भी वफा कम है, वरना जीती हुई बाजी तो ना हारे होते। किस तरह का जीती हुई बाजी, अगर आपने कभी कहा नहीं, इजहार नहीं किया तो कोई बाजीबाजी नहीं है मेरे प्यारे सुनवालो। आप बैठ के रह जाओगे और आपका प्यार यूं ही निकल जाएंगे किसी और के साथ, और आप बैठकर कहीं हुकूकू में आप गा रहे होंगे कि दम घुटा जाता है सीने में फिर भी जिंदा है, तुमसे क्या हम तो जिंदगी से भी शर्मिंदा है, तुम मर ही जाते जो ना यादों के सहारे होते। अरे हम भी तो प्यासे हैं लेकिन ये साखी को बटा भी ना सके, यही तो गलती है, बताया नहीं। अरे बाप रे, लेकिन सामने जाम भी था और तो के इतना भी ताकत ना है कि ये जाम भी आपने उठा भी ना सके। काश हम गैरों के महफिल के मारे ना होते। बहुत ही खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनवालो, लेकिन इस गीत में भी एक सबक है जो आप सीख सकते हैं अगर आप समझ जाएं कि क्या क्या गलती इन्होंने किया है। द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेश जी की आवाज, इंदवर का लिखा हुआ नगमा। इंदवर साहब जी, हैट्स ऑफ, बहुत खूबसूरत गीत आपने लिखे। और फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनवालो, दिल ने पुकारा। इस दर्द भरे गीत के बाद मेरे प्यारे सुनवालो, आनंद बख्शी जी का एक रोमांटिक सॉन्ग, संगीत की देवी लता जी और सुरों का बादशाह द लेजेंड पटमा श्री मोहम्मद रफी साहब जी।

हमने आज से तुम्हें ये नाम दे दिया जाने मन। इस बहाने प्यार का पैगाम दे दिया ओ जाने मन। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, द ग्रेट आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ और जो मिलकर गाए हैं संगीत की देवी लता जी और द लेजेंड सुरों का बादशाह रफी साहब जी, राजा साहब फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों। ले चलते हैं आपको गीत की ओर। एक नगमा दनमोटिक्वेल ईव स्खर्ब से था, अंजान साहब जी का लिखा हुआ मेरे प्यारे सुनने वालों। अब की बार द ग्रेट अंजान साहब जी का नगमा हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज।

जो मिला खो गया, क्या मेरे पास है। दर्द ही दर्द है, प्यास ही प्यास है। मेरे दिल ही जाने मैंने क्या क्या जहर पिया है। जीने दे न मरने दे, लेकिन मुझे ऐसा गम दिया है। मेरे प्यारे सुनो, बड़े अनजान साहब जी का लिखा हुआ गीत, किशोर कुमार, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की डर भरे आवाज में गीत इन्होंने गाए हैं, आप तक हमने पेश किया है। और फिल्म का नाम 2 और 2 5। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनो वालों, मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूं, पहले 6 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी सरे 10:06 ओवर द क्लॉक फॉर हाफ एल्फ। 11 बजे तक आपका साथ हम देंगे मेरे प्यारे सुनो वालों। डॉट ऑफ मिलियंस माइदे मुकेश जी को पेश करने जा रहा हूं, ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग इंदौर का लिखा हुआ मुकेश जी की आवाज। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे।

देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के, और पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, और तुम दिन को कहेंगे रात तो हम रात कहेंगे। द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायते मुकेश जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, और खूबसूरत प्यार भरे लफ्ज, अल्फाज़े शब्द इनवर साहब जी की कलम से लिखा हुआ फिल्म सफर का नगमा आप तक हमने पेश किया है। मेरे प्यारे सुनो, रातें आएंगे, आज का बीते हुए नए रातें भी आएंगे। इसके बारे में लता जी ने कुछ गाए हैं, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, पेश करता हूं सेवा में संगीत की देवी लता जी।

रहा है, देखो कोई जा रहा है, देखो कोई सबके दिल है, जागे जागे और सबकी आंखें खोई खोई, खामोशी करती है बातें ये रातें नई पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। संगीत की देवी लता जी की आवाज और आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ नगमा हमने आप तक पेश किया है। मरकरी जी, थैंक यू वेल फॉर यू हैप्पी काबोली हेल्पफुल स्टेरक तक काबोली काबोली काबोली फिर वाल दो। मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने का आपको मरकरी जी, लेकिन हमारी हर एक दुआ प्रार्थना आप दोनों के साथ है। हिल्स उस तरह तक रखती वैसे नक्शलाल पुरी जी का लिखा हुआ गीत पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुनो, मनहर उदास और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें।

हर जन्म में हमारा मिलन और दो दिलों का उजाला रहे, नैनों का संगम होता रहे और सपनों का सावन गाता रहे, फूलों के मेले लगते रहे और गीतों का ये मौसम आता रहे, भोर की किरण सांझ की पवन गुनगुना के कहे, मैं तुम्हें देवता मान लू। खूबसूरत गीत, प्यार भरा गीत, रोमांटिक सॉन्ग, नक्श लालपुरी जी, इनका लिखा हुआ मिलकर गीत गाए हैं संगीत की देवी नहीं नाइटिंगेलाशा जी, नाइटिंगेलाशा जी और मनहर उदास, कागज की नाव फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुनो, आप धुन सुन रहे हैं, यही धुन के साथ दिल की आवाज हम आराम करते हैं और जब भी दोहराता हूं तो मतलब ये कि आखिरी गीत पेश करने को हम जाएंगे, वक्त वही आ गया कि आखिरी नगमा हमें पेश करना है और आखिरी गीत मुकेश जी गाएंगे, हसरत जयपुरी जी, जिनका आज 27वां पुण्यतिथि है, 27 sterfdag, jaar natuurlijk hè. हसरत जयपुरी जी बहुत सारे खूबसूरत गाने लिखे हैं, इनका प्रोग्राम हम सजा चुके हैं बैक टू द फ्यूचर में, इनका लिखा हुआ गीत मुकेश का आखिरी आज के प्रोग्राम में। मेरे प्यारे सुनो, आप सभी से फिर हम मिलेंगे आने वाले शनिवार की रात्रि को 7 बजे रात्रि पेश करेंगे प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर टिल मिडनाइट। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। वेल, रहा फूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज, टेक केयर और रिमेम्बर आई लव यू ऑल।

बीन कोटरावर तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है, सुनवा लो तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस खयाई बीन कोटरावर तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है। नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

राम करे कि ऐसा हो जाए कि मैं जागूं तू सो जाए, मेरी निंदिया तोहें लग जाए। मुकेश जी की आवाज़ और फिल्म मिलन का गीत अभी आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम में। अब हाँ, सुन गाना।

बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। और गीत आप सुने तलत महमूद साहब की आवाज में, फिल्म कैप्टन की शोर का गीत, उजाला रेडियो पर।

उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम यहीं से हम शुरू कर रहे हैं कॉफी चाय मिंदक शो सुन वालों वेलकम अलमाओ। अभी थोड़ी देर में हम बात करने वाले हैं मैं आनंद चंद्रिका सिंह आज के समाचार के बारे में फ्रॉम द अफलोप दागे या कोमेंड दागे के लिए जो समाचार है एंड लुख्तगो ऑन द वेब आज के प्रोग्राम में एक बजे तक ये प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं आपके लिए कॉफी चाय मिंदक शो। और कल हमने वादा किया था ना कि आज हम जरूर बनाने वाले हैं तो वादा हम तो निभा रहे हैं। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। तो वेलकम अलमाल बाय यू आर उजाला रेडियो उजाला के मिदा शो कॉफी एंड चाय। ई गनवा तो सुनिए। ई गनवा इतना मोई गाना हैगा कि जीवन के हर मोड़ पे फदरेश मुझे मार्शाला फिर फुलाए सुरें।

0: जिस जीवन के हर मोड़ पे अगर एक अच्छा मोय हम सफर मिल जाए तो जिंदगी गुजर जाएगा बस आराम से। तो
1: तू वही है जिसको ढूंढे कब से,
0: जिस जो तू कौन के खोजत हुई है तेरे मोय हम सफर खोजिए
1: मिल जाए,
0: जिसके साथ तो जीवन मोय से कटी। किशोर कुमार की आवाज में है और ये भी फिल्म का नाम है झूठा कहीं का, झूठा कहीं का। और ये गानों में या यू हैव एन अगेन सॉन्ग टू सिंग, देयर कम्स अ स्टुक हियर वेयरिंग इट ऑन कमेसिंग एक्ट वेल नहोरी दान पापा पापा पापा वगैरह वगैरह वगैरह। मां गनवा मोय हैगा, गनवा के साथ भी तू गा सके हैं। Music video.

0: आप खा रहे कि नहीं खा रहे?
1: जी नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ।
0: डाइटिंग? लगता तो नहीं।

गुलाबी रात के साए तले इन मासूम बच्चों की रात कितनी भयानक है, कितनी काली है।

देश का बचपन भूलता हो, फिर उसकी जवानी क्या होगी, फिर उसकी जवानी क्या होगी।

जब भी देश की बात होती है ऐसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से पिलकते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुचले जाते हैं, मसले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें तन ढकने का शौक नहीं। ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई